0: Radio Aman Network, News and Information Station.
1: Radio Aman Network,
2: Pegham Aman Hai,
3: Pyar Ki Ek Duniya Lekar,
4: Mohabbat Se Samet Kar.
5: सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
6: रेडियो अमन नेटवर्क।

0: शुक्रिया। आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन नेटवर्क,
2: पैगाम अमन है।

0: प्यार की एक दुनिया लेकर
1: मोहब्बत समेट कर
2: आपकी जिंदगी में।
1: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

हाँ हाँ जी बिल्कुल, और अरसलान दा महल में मैसेज किया अरसलान वाइट चीज से वही अभी उर्दू सॉन्ग प्ले के प्लीज जनाब नो उर्दू सॉन्ग प्ले का बिल्कुल जनाब उर्दू चीज में कम फेवरेट सॉन्ग देखे ना नो अगर शफकत अमानत अली दी सही ना शफकत अमानत अली नो शफकत से वही जनाब जिंदगी से चुरा के जिंदगी में बसा के जिंदगानी बनाया है तुझे रूठे रब को मना के आसमां को झुका के जिंदगानी बनाया है तुझे क्या नाम सभी जिंदगी से चुरा के जिंदगी में बसा के जिंदगानी बनाया है तुझे रूठे रब को मना के आसमां को झुका के जिंदगानी बनाया है तुझे एंजॉय किया ट्रैक वापस रस बेकअप लगो सीधी दस बार फेवरेट सॉन्ग दिखा

0: आवाज हमारी कम कुपरी ना
1: आवाज प्रोग्राम के तार के ले भाई
0: क्या सिंगर है खैर जी खैर दे
1: खैर खैर दे आवाज तार जी जुड़ेगे
0: हाँ जी बिल्कुल अरमान मुझे इस जगह आज
1: मरा दार मन में पुरुष खुदा रहता हुए दार जी से तो भाई
0: रेडियो जर्नलिज्म
1: दादा दा चावी
0: दारा तो बस शहर भी की नो
1: दा गलती दर्द है दीदी कहना मरा आरजी मतलब आरजी ज़्यादा तमाम करना आरजी मतलब देखा ना आर न मतलब दे रोटे और जे न मतलब दे जोड़ा जोड़ा उलो वाला द रोटे जोड़ा उलो वाला नूर द रोटे जोड़ा वाला जोड़ेगे सही था करना व्यापक होता है जोड़ जोड़ का मरा टेंशन वाला सही था डेरा मंदर ना को वापस किताब तो 500 लाख रुपए मिला उसने कार पके ता 500 लाख रुपए मिला उसी दो घंटों द बारा सब के वर्षा
0: 50% बा लपलाई को गुड मार्च को को या मदरसा के वगैरह 50% जी जी मजा ले कुल इसको जोड़ो पर करा
1: सही जो
0: अगर नहीं करा
1: ओहो हाँ
0: आओ कहना दमाए टीम में लाओ दाल चूप बदान कर रहा हूँ इस समय
1: आओ
0: यार जेगन बाराटूल का मेरा जुबान पर जेगन की होड़ी रजिया थी
1: अगले बार 500 लाख रुपए नहीं लगी शेजाना अगले बार धद्रे को लोड रुपए बकार दी अरे 500 लाख रुपए कार में दे
0: कार दे जी
1: अडे रमन ना कोमा से टाइम पर खत्म हो जाए बस सा सुटी रहे तमन ना आमी से जिसम डिजत रगले रे इंतजार सब शामिल को भाई थाज भाई ना गजन पे जन सा सुटी रहे तमन ना बल मैं

0: बात रहे कि उनका तावन सियासी हो या कि गैर सियासी हो, कि जिस तरह का भी है, ताजर बरादरी का, ट्रांसपोर्ट का मसाइल तो बड़गाम के डिस्ट्रिक्ट के काफी हैं, आपको भी नजर आ रहे हैं, हमारी आवाम को भी नजर आ रहे हैं। कब से ये जिला बना है, यही के के चोड़ है, इस पर गिलगित बल्तिस्तान तमाम डिस्ट्रिक्ट, तुरगर का भी, शांगला, यहाँ के बड़गाम के भी गांव देहात से अलाई से लेकर तुरगर के नए जो बने हुए मनसेरा आगे पीछे तमाम दफातर, तमाम ये इस रोड जो रोड है जिसको केकेद कहते हैं, इसी पर बाजार भी बना।
1: बिल्कुल,
0: जब बाजार नहीं था तो इससे ट्रांसपोर्ट भी कम थी।
1: बिल्कुल,
0: और उस हिसाब से लेकर आज देखें तो तरक्की के लिहाज से काफी आगे चला गया दीगर डिस्ट्रिक्ट में। रोड देखें अगर तो रोड के मुनासिब से दीगर हमारे डिस्ट्रिक्ट में देखें, बाईपास बने हुए हैं, अवामी सहूलियात के लिए पुल भी इजाफी बने हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के अंदर हमारा ये केकेद के अलावा किसी किस्म का कोई बाईपास ना है। इसके बावजूद भी हमने अपनी आवाम को जिस तरीके से कहा है कि भाई यहाँ से नो पार्किंग से यहाँ से गाड़ियां हटाएं कहीं और, क्योंकि नो पार्किंग का अभी आपको पता है किसी किस्म का कोई नो पार्किंग में ऐसी जगह जो है सहूलत नहीं दी लोगों को कि पार्किंग दें हम उनको, उसके लिए कोई जगह हो वहां खड़ी करके अपना सौदा सलब लें। तावन हमारी बड़गाम के अवाम का हमारे साथ बहुत जबरदस्त रहा है अभी तक, छोटे से लेकर बड़ों तक मैं इनका मशहूर हूँ, मजीद भी इन्होंने बहुत ज्यादा कोऑपरेट की है हमारे साथ, अभी कर भी रहे हैं।
1: इम्तियाज खान, अगर हम देखें, आपने पार्किंग की बात की, ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक की बात की, तो जिस तरीके से आपने बताया है कि ट्रैफिक में इजाफा हुआ है और रोज बरोज भी इजाफा हो रहा है, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है उसी तनासुब से ट्रैफिक की जो रवानी है वो भी बढ़ रही है, और बढ़ने की वजह से मुतासिर भी हो रही है, ट्रैफिक जाम का मसला भी बढ़ रहा है, पैदा हो रहा है, और उसकी मेन वजह जिस तरीके से आपने बताया कि बाईपास का ना होना है, ये दो अलग अलग इशू है जिस पे हम बात करेंगे। पहला इशू जो है वो पार्किंग का है। अगर हम देखें तो बड़राम शहर में बाजार में, एक छोटा सा शहर है, छोटा सा बाजार है इसका, तो इस बाजार में अगर हम देखें तो जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पे बाहर से भी मेहमान आते हैं, यहाँ के जो तहसील अलई के हैं, बड़राम के हैं, तो यहाँ का भी अपना काफी आबादी है यहाँ पे, वो लोग भी यहाँ पे आते हैं, इसकी वजह से ट्रैफिक जाम का मसला रहता है। लेकिन ट्रैफिक जाम में अगर हम जिस चीज को देख रहे हैं वो पार्किंग का इशू है, पार्किंग का मसला है। यहाँ पे लोगों ने अगर देखा जाए तो डीएचके हॉस्पिटल के बाहर यहाँ पे गाड़ी खड़ी रहती है मेन सड़क पे, इसी तरीके से यहाँ पे सामने पुल के इस तरफ अगर आए तो वो शंग्रीला होटल के सामने, यहाँ पे भी गाड़ियां और मोटरसाइकिल है। मतलब ये है कि अगर मैदान से हम शुरू करें तो मैदान से लेकर ये नाराजा मोड़ तक यहाँ पे मेन सड़क पे लोगों ने मनी अड़े बनाए हुए हैं, अगर अड़े नहीं भी बनाए हुए हैं तो लोग यहाँ पे साइड पे गाड़ी खड़ी करके वहां से चले जाते हैं, इस वजह से ट्रैफिक जाम का इश्यू और बढ़ जाता है। क्या कहेंगे ये जो मनी अड़े बने हुए हैं या जो वो लोग जो यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं, वो तो ये नहीं समझते हैं कि इनकी एक गाड़ी खड़ी करने से कितने लोग मुसीबत में पड़ जाते हैं, क्योंकि बीमार भी होते हैं बीच में, बुजुर्ग भी होते हैं, बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में और इस रवैये के बारे में क्या कहेंगे आप?
0: देखिए जी, बहुत जबरदस्त आला, आपने जहां तक ये पार्किंग और मनी अड्डों की बात की है, बड़गाम के अंदर जो अवामी मुतालबात के मुताबिक अथॉरिटी ने जो रक्षा स्टैंड दिए हैं या टैक्सी स्टैंड दिए, अवाम के मुतालबात और अवाम की चॉइस के मुताबिक दिए। आल्टो में जो हॉस्पिटल के आगे जो बात की आपने, देखा जाए तो जहां जितनी हॉस्पिटल बनी हुई है मेन रोड पर,
1: बिल्कुल
0: बिल्डिंग तो जरूर उन्होंने बनाई है, सोच समझ कर बनाई होती कि हमारी बिल्डिंग हॉस्पिटल के लिए या स्कूल के लिए, आया इसके अंदर पार्किंग की जगह कहाँ है, ये गलती है ना?
1: बिल्कुल।
0: तो ये इन चीजों को अगर उन्होंने उस वक्त मेंटेन किया होता, पार्किंग अपने प्लाजे के नीचे, हॉस्पिटल के नीचे पार्किंग बनाई होती, मरीज जो आकर खड़े होते हैं वो हमसे यही डिमांड करते हैं कि मेरे साथ पेशेंट है तो मैं आप कहाँ जाऊं, तो सरकारी हॉस्पिटल में भी जगह है लेकिन वहां भी रश ज्यादा हो जाती है, गाड़ियां खड़ी होती है क्योंकि वहां अंदर पार्किंग की सहूलत मुयसर है, उसमें 10 और 20 रुपए लेते हैं,
1: टैक्स लेते हैं।
0: उसकी वजह यह होती है कि गाड़ी गुम ना हो जाए वापसी पर, वो रसीद वापस लेते हैं, ये एक उनकी तफज की बात होती है। तो दीगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल देखें ना, आप देख सकते हैं कि हाई स्कूल के साथ बिल मुकाबले 3 स्कूल हाई स्कूल,
1: बिल्कुल
0: इन स्कूल के आगे जो प्राइवेट इन स्कूल के आगे पार्किंग इन स्कूल की बिल्डिंग की नहीं है। कानूनी तौर पर ऐसे स्कूल की बिल्डिंग तो हमेशा बाजार से दूर होनी चाहिए ताकि वहां बच्चे रोड भी क्रॉस करते हैं, पिक एंड ड्रॉप भी होती है।

0: खतरनाक अमल है, इससे एक्सीडेंट होकर इतने लोगों की जान जाया हो सकती है। तो उसकी मद में हम तो खिलाफ वर्जी कोर्ट में चलान जो मुकर्रर गवर्नमेंट के किए हुए हो तो हम करेंगे। एक आदमी कानून की पासदारी नहीं करता तो सजा तो उसको मिलेगी ना।
1: बिल्कुल।
0: तो ये जो जितने भी बड़गाम के अंदर ट्रांसपोर्ट अभी बेहद ज्यादा है, तमाम खिलाफ वर्जियां, खिलाफ वर्जी के अलावा किसी किस्म का कोई नाजायज चालान ना ही कर सकते हैं, ना ही किसी किस्म का कोई करप्शन कर सकते हैं, ना ही हमारा डीपीओ साहब मान रहा है, ना ही हमारा आरपीओ अदारा डीआईजी साहब मान रहे हैं, सख्ती से अमल किया हुआ है। उन्होंने कहा जो हाँ जो रेट चैलेंज कर रहे हैं, आपको पता है एक आदमी लाइसेंस ही नहीं बना रहा, एक आदमी कागजात ही नहीं बना रहा, एक आदमी एपीएल लेकर फिर रहा है, एक आदमी हेलमेट नहीं पहन रहा, तो उनको बार बार अवेयर करने के बावजूद आखिरकार मरीज जब डॉक्टर के पास जाते हैं वो टीका जरूर लगाता है। तो ठीक करने के लिए इनके लिए जुर्माने ये हैं, ये जारी रहेंगे। अगर इन अजियत से बचेंगे, इन अजियत से बचना चाहते हैं तो अपना हेलमेट, अपने कागजात, अपने लाइसेंस, अपने आप को कानून के मुताबिक रखकर बड़गाम में चलें, टेंटेड क्लासेस ना करें, नो पार्किंग भी ना करें, गलत जगह पार्क ना करें, गलत सवारी ना बताएं, गलत काम ना करें तो उसकी सजा नहीं होगी। आप ठीक रहेंगे तो ट्रैफिक स्टाफ वालों की तरफ से मैं ये बैठक आपको सलूट कर रहा हूँ कि मैं 24 घंटे आपके लिए ताबीदार नौकर।
1: जो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा जाहिर बात है कि उसको उसको ठीक है जो है वो लगेगा। तो चूंकि टाइम मेरा खत्म हुआ है तो जमील खान साहब जाते जाते क्या पैगाम देना चाहेंगे मुख्तसर अल्फाज में, क्योंकि टाइम मेरा जो है वो बिल्कुल चार्ज है।
2: थैंक यू स्वाति साहब, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, मेरी बड़ग्राम की प्यारी आवाम को, मेरी बड़ग्राम की प्यारी कौम को अल्लाह ताला कायम दायम रखे। अमन के बहुत मशकूर हैं, वो हमारे साथ बहुत तवन करते हैं। मैं यही पैगाम दूंगा अपनी बड़ग्राम की कौम को कि कानून की पासदारी करनी है, अच्छा शहरी होने का सबूत देना है, अपना ख्याल रखना है, केपीके पुलिस के लिए दुआ गुआ रहना है, केपीके पुलिस आपकी खिदमत में हर वक्त पेश पेश है।
1: इम्तियाज खान जाते जाते आप पिश्तों में क्या
0: पैगाम आला दा निजाम बम दुरुस्त हुई नबा चालान की गई नहीं जुड़ेगी सास मीना अगर अजमुख तलब ने
1: एक मरतबा फिर मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला, मेरे पास यहां पे आए, इस प्रोग्राम में शरीक हुए और पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से जितने भी सवालात थे, शकूक शुबात थे और हम समझ रहे थे कि जिससे आवाम को फायदा हो सकता है उन्हीं मसाइल को हमने इस प्रोग्राम में डिस्कस किया है। तो जाते जाते आप दोनों का एक मरतबा फिर दिली शुक्रिया। और इधन को गतन को जमादा प्रोग्राम टेम दगजे के खत्म दे पतलू तो के जदा मैसेज दोबारा रिपीट को माँ चिपाखपल चापिर चल के चमगावन चनकुसा कूर किली और पालाका के ख्याल कवाए डेर द महंगाई वक्त है डेर खलक दासे दे चिया बेवस दे बेकस दे मजबूर दे लाचारा दे दगा खल को सरा मरस्त हो गए तावन हो गए उर दे गई जका चिजमंगा दगा ध्वध निमी रजी ज्वन चिकम दे दा खैर खेगड़ी द पारा दे दा मरस्त द पारा दे दा तावन द पारा दे दगा बा मंगला पकार रजी और दे सरा सरा पचा बंदी हम एतमाद एतबार भरोसा मकावे जका चिदा से वक्त रागल ले खल्क दोकरा की नो चा सरा चिस खबर कवाई अगिन मख के अकबल मशरान सारा मशवरा कई आगे रुस्तु बिहा कार कवाई पहा कार के बाद दुख नी और पहा कार के बाद बरकत भी दे सरा सरा दस वक्त खलक प नशो तमाशो के गेर दे डेर खलक दासी दे चप आइस के पमनशियातों के अख्त दे दे कोशिश दा दे चमंगा दगा गुलनो पशांति जवानान माशुमानान दा हम पदगा नशो तमाशो की गैरशी दगा जमंग जवान दगा द गुल पशांति माशुम का पनशो तमाशो की गैरश द मा द पारा जमा मुस्तबिल द पारा और दगा मुआशरे द पारा दबा नासू वखपल पमाशुम बंदे नजर उसाताई के जुन वीन वरातुन की जुमरात पर अजीब ब्या योबल मिलमसरा पदगा प्रोग्राम अवामी अदालत के स्तासुमख के बा हाजिरी गम तरहागे पूरे दखपल द्वारो मिलमनु इम्तियाज खान और जमील खान सरा तासुना इजाजत वाड़म दलवी अल्लाह पर अमान।

0: शुक्रिया। आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4, खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है,
4: प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बत समेट कर,
6: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
5: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
6: रेडियो अमन नेटवर्क।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।